0: यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिशा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
1: इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग का मनी का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं, लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इस धर्म में।
2: मेरा नाम लेवस तिर्की है, मैं 15 साल का प्रचारक में हूँ कर रहा हूँ। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ।

मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए तीन जगह जाता हूँ। घटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, तो इधर अरगोटी 8 किलोमीटर। मैं ये थैली पकड़ता हूँ तो जब गांव जाता हूँ तो ही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा एक दो पकड़े रहता हूँ। कहीं भी गांव जाता हूँ तो लोग जहाँ जाता हूँ वहाँ तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं।